0: ये लियो ये जा नेंगु लेन सा लुंग ला बे
1: काची जा लुंग ला हुशे रागे दांग बु छेव दी जी बी पोलिन जे तु जा रान ल जे दी ले शुंग दा चांगु छेन के यो मा री दांग बु नि छे सा बी काची जे छे मे के छे मा री मा दा छिक बु जी
2: 渐行渐远的
1: 你也是这么个铁皮